0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

हरि गुरु बल्ला सरकाल पली के सूख दी तासुम काल के बोले शही सिपर 315-94-32 दो सिपर 315-94-32 दो पिशावर की टूल पिशावर के मिलावी के जमूंगा प्रोडक्ट बताओ समा आवाज पर मतनो के हुए नो मतनो अस्पताल तमखामख दुबई मार्केट दी पर दुबई मार्केट की आवासीन एक्सरो

हाँ जी बिल्कुल फरमाइश कुंदा के ना नो अब हम पर को के ना आओ नो गुरगुरे तोरे तोरे पास पकमर और बिल्कुल गुरगुरो तो हम और जैसे के गुरगुरो सीजन देगा ना हैदर अफरीदी बा अक्सर वेल करे मेरे वालों जे मुंग पला वाला जे गुरगुरे जी कुमी याल तल्लो जंगल वे गुरगुरे वखरू विचार डेरे घाटे घाटे गुरगुरे री के ना अब बिल्कुल मेरे वाली यार इज द लाड हूं के ना नो हल तो कमर ही के ना पापा कमर सड़े वर्जी हम के ना तीली जी हम के ना गुरगुरे के बड़े ख्याल करे जगी हम भी नो जक चे गुरगुरे चे शुकाई के ना नो सख्त मुश्किल आ तो की जा सख्त तकलीफ की ईवाई हो बशुकाई

हजुर बिल्कुल निहाल सिक्किम सारा काम पाते का बिल्कुल दास प्रोग्राम था प्रोग्राम की उम्र शिरकत को लकचे तमस दिगर वक्त सिक्किम दिखना था डेर लैंड वीक है ना और ये रिजर्व पमंड मंडल जी लला बहन जी के ना ऐसे जमदून चिकुम दा हम डेर पमंड मंडल जी के ना

बिल्कुल बस कल कला मौका मिलो छी इस मकसद पाकिस्तान प्रोग्राम छी इकराम से वो यादिन लवा इनाम से चुकम दी बीजी बिया चुकम दी मौका मिलो छी

0: आओ माता विलेशी सुबह जबर तारीख किसी गल बनी बलसू को दिखम देने दी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी सुख खबर की विकम देना सुकम अच्छा सफा शेरानी डी हान ना खबर कवे जी सफा शेरानी बखेर रगल जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक तब खबर बांदेश आए खजी दार तो हुए छे डी हान की गर्मी डेर ज्यादा तवी दा खबर ठीक तो उस गर्मी शताओ का ना सही सही बस लाना भी दुआ की छे मतलब खेर बारानो ना उसी और अक्सर प्रोग्राम की खबर क्यों है जैसे लश्की लश्की बारो में क्यूँ ना ना गर्मी में दासी तरीके से रहती रही बस ला दे की रिहान के हाँ बारो मछी सही दारा तो छे कम इश्मा कश्मीर पाकिस्तान प्रोग्राम दे जो खुदा से कल कला नहीं शमो प्रोग्राम की दी प्रोग्राम की फर्स्ट टाइम कॉल करेगा ना खजी सही था डेरा मना ना से फर्स्ट टाइम प्रोग्राम से कॉल को दारा तो जी सब सरंगी अच्छा द्वेम जल्दी खड़े थे शाशा सही सही खजी दारा तो छे सब पैगाम बोवर कवे सुमराह इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान मीनावाल दी या सुमराह मीनावाल दी तो से कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करी दी प्रोडक्ट डिहान की तब कम देखिए दे कॉस्मेटिक दुकान है बिल्कुल हर कॉस्मेटिक मेडिकल स्टोर की द इश्मा टोल प्रोडक्ट मिले जी सही शुआ ठीक शुआ सही था डेर मनन दी काल कवले डेहान ना दी काल को यो जहान मनन लो या खतर सही था ओके लावे डेर मनन काल कवले यो जहान मनन डेहान ना काल कटे डेर डेर मनन गुराम से दी काल को राम देश में कॉस्मेटिक पाकिस्तान माता विली शी सुबह दोपहर तारीख कमर रेडियो वाने प्रोग्राम हो रहे लकी रेडियो वाने या टांग रेडियो वाने या देना इलावा ग्लोबल 91 डी 100 वाने या करक रेडियो वाने बिल्कुल इश्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हर मेडिकल और कॉस्मेटिक स्टोर के तो सब पास नहीं सर मिला विदाई जी कॉल प्रोग्राम की शामिल अभी किसी जब कॉल बने बल सो को देखिए हम जाने दी अस्सलाम वालेकुम ओय होय बिल्कुल ठीक ठाक दा हो कारी नूर खिताब रगाई उरोसे शॉपिंग सेंटर अमीरी किला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक कारी से तखपल बांधे शे पता देने लगी बीखी कारी से सरंगे आवाज इकट कीजिए बिल्कुल दा खबर टिक तो बस चिकला हम मुकाम लवी जी का नो बस इंशाल्लाह प्रोग्राम तो रसी खुदा खबर टिक तो करी से भी सीधा से मतलब तो से रुगली वगैरह टाइम ना बस कांटेक्ट ना दे सर शो बस मसरूफियात थी खामा खा सड़ाई मसरूफ हुई तो से मसरूफ हुई जी बिल्कुल करी सब करी से आवाज इकट कीजिए लड़की सही तासो चेंज के जी जी
1: प्रोग्राम का
0: बिल्कुल बिल्कुल ना इंशाल्लाह मौका

दहर झुला आवाज रेडिओ मान आवाज रेडिओ मान 88.4 नेटवर्क नंबर रोज तासला पारा दगशान मलमती पर ब्रह्मना चेतस तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंगस तास सरयो रेडिओ मान 88.4 करक आवाज दस तासो आवाज।

0: 88.4.
1: हर झुण आवाज रेडिओ मान आवाज रेडिओ मान 88.4 नेटवर्क तासला पारा दगशान मलमती पर रमना चित स्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंगस तास सरयो रेडिओ मान 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन
0: This is Radio Aman.
2: This is Radio Aman.

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: हर झण आवाज रेडियामान आवाज रेडियामान 88.4 नेटवर्क मुंगरवळूस तासुला पारा दगशान मलमती परग्रमन चेतस तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मुंगस तासो सरयो रेडियामान 88.4 करक आवाज तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन
2: This is Radio Aman.
3: Radio Aman.
2: 88.4.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.

गुणगर्गिले काणि वारवीना सर्गुष अगवेषु दकलिकुंशुमुत्पडेषु दगवण्डित वलेदला सुरेषु कमे वडिके उरुगल्मेषु अदके

हाँ जी सलाम जी, आइए माँ गुल बहादुर करक शगई लवाखिर ने एसएमएस रो कड़ाई दा सर जी माशाल्लाह आवाज दे मजदार दा डेरा मनना थैंक यू जी। हाँ बल एसएमएस है अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई जया आज वा खटक प्रोग्राम दे डेर खान खान रुकावी हर टाइम ये वुर वो उदा खान दू दे डेर खान रुकावी ओके डेरा मनना कितने मैसेजेस भेजे फिर भी आप मेरा वाला सॉन्ग प्ले नहीं करते हैं। हक तो बनता है बिल्कुल शावाली का नजर वाली उस्ताद शावाली। अच्छा जी दे शावाली वाला संदरार बुंदे लगा वे खा हो कप मुझसे चाल वो सा शकाना।

0: अच्छा जनाब बस फरमाइश हुआ सुना सर लश्की डेरी और वे दिन खुश हुई दवा हुई चकी मधु फजुल शवाई ने भी दे मुदे प्रोग्राम आखिरी से बेह दी खुजिफा में शनावल आई वो पछतना वरना की दादा टेम सरंगे तेर का दुलाता हाँ जी रही मैसेज शामिल हुआ सलाम एंड वेलकम कोको हीरो लाले लाले हाउ आर यू लाले वाओ वाओ नाइस दा बिल्कुल अगप शान ओके लाले इट्स मी योर ओरिजिनल एक्टिव लिसनर मरवाता जलकई उर्फ था उया ओके लाले मैसेज में न कवा तोला शो में साइलेंट उर्वेदा को जस्ट में शो के एंट्री का वाला छे मिजा या उर्वी डेरा मनना डेरा शुक्रिया थैंक यू जी दाहशा खबर दो चे साइलेंट थे प्रोग्रामर वेदलाई वी हाँ दाहशा खबर दो हाँ नो खुजे फावर शा कैसा सदे वली दल सदे वो कतल सदे वो वेदल
1: यार डर से मिस दाकड़ल दर ने दाहशा खबर दो चे पश्चिम यावली लेकर ली
0: अच्छा ना कजे मजलस को भी यावला इकड़े एमो खुदा उस मजलस ही ना दी
1: वो खेर से डालेर चकड़ा
0: डालेर चकड़े ना ब्याह वर चकावन चलर की दीदा खूब बहुत रही जी का ना खेरी से ब्याह दर तवर चकाव दास फोन ना दूचे तवी आए का ना
1: ब्याह तवर चकाव हाँ
0: नो जख भी आए लश्की वो व्याल शो आई वेवर सरा
1: बिल्कुल
0: सो ये लश्की तरता वजह के रजो उधर तगला है शो
1: मैं तो खोया एक बनिसी है टकड़े रखा हमरे को
0: क्यों
1: अच्छा इल्चे पर जो सरा उन्हों को लगा एमएडी खबर है जो बनिसी उन देश विनस तड़िया ही का ना लगा बनिसी ने दे जे पारा मिसो दे जे पापारा बनिसी ने दे जे बेजा मिसो दे जे बाबेजा